जीवन यात्रा शीतलता बीमा जीवन यात्रा जीवित यही माँ पलेना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ किप्स एफएम छिगु जीवन या सदाय मुपासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 एफएम जीवन यात्रा जीवित यईमा किप्स एफएम अलेना पा छेगु जीवनया पला पला नेपकीमा किप्स एफएम छेगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता धीमा जीवन यात्रा जीवित यही मा अलेना पां छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी मा किप्स एफएम छेगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

0: प्रेसको साथ अब नेपालभरि 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज अन जहाँ पनि खुरुखुरु
0: कनेक्ट टु माई वर्ल्ड लिंक एन्ड अलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यु आर।
2: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
3: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
2: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.

0: Yo ho, Kips 98.3 FM. Tapai sangako sahayatra.
1: सौंदर्य स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल साथ में सुन्नुहोस् नेपाली र हिंदी सुपरहिट गीतहरु मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे र मंगलबार बिहान 7 बजे

0: Plus FM 98.6 MHz.net.
1: केही नौलो
2: रोचक
1: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरू किप्स 98.3 FM मा कार्यक्रम रेडियोमा रोचक रेडियोमा रोचक
2: हरेक सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बुधबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला मात्र किप्स 98.3 FM मा
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
4: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
3: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3

0: Cheeps FM 98.3 MHz. Your companion.
1: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल साथ में सुन्नुहोस् नेपाली र हिंदी सुपरहिट गीतहरु मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे र मंगलबार बिहान 7 बजे.
2: What's the secret to success?
3: Simple. Say yes to radio advertising.
2: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
3: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
2: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.

0: 宝贝儿嘞，
1: 听得有人叫
0: ，Tips 98.3 FM。
2: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब
3: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग
4: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग
5: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल
3: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग एवरी संडे 9 पीएम ट्यूसडे 6 पीएम
5: पहला नशा पहला खुमार
3: स्टेशन गिव्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
5: नया प्यार
6: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम
5: चलने लगी है हवाएं सागर भी लहराए
6: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

नेपाली बॉब फ्लैशबैक एवरी संडे एंड ट्यूजडे 10 p.m. थर्सडे 9 a.m. एंड सैटरडे 5 p.m.

0: You can dance.
1: You can sing. All you gotta do is
2: just tune in.
1: KIPS FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
3: 아밀라이 순호스 www.kipsfm.com 마르폿. Just tune in radio 나야 generation 코.
1: Motorcycle battery easy exchange offer.
4: तपाईको पुरानो मोटरसाइकल ब्याट्रीहरू एक्सचेन्ज गरी नयाँ 48 महिनासम्म वारेन्टी भएका मेन्टेनेन्स फ्री मोटरसाइकल ब्याट्रीहरू लग्नुहोस्।
5: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेसनको लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
6: Best romantic Hindi song.
7: तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं?
6: Every Sunday 9 p.m. and Tuesday 6 p.m.
8: History of rock.
9: Here I am. Rock you like a hurricane.
10: Monday 3 p.m. only on KIPS FM 98.3 MHz, your companion.